0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

हाम्रो धार्मिक संस्कार र परम्परा अनुसारका विवाह व्रतबन्ध सप्ताह रुद्री सत्यनारायण पूजा लाखबत्ती चौरासी पूजा न्वारन

0: अनुरोधक दीपजनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बदे प्रसाद साहबकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष मे 8 तारीख वैशाख 25 गते शुक्रवार षष्ठी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पै भरी

राजा नहुष काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाय नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णय समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हवस सर्वा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हवस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान हवस सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

गाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।